0: ବୃକ୍ଷକୁ ଚେର ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा

0: मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। आज वंदनार प्रथम कंठशिल्पी

0: चेटिनाड सिमेंट उपरे
1: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही था चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
2: आपण मन कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुजो अनुचिंता निवेदन करिसंती घनश्याम मिश्रा।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र आम परवर्त कार्यक्रम रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली किसी क्षण मध्य
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने

0: भिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और N. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल

0: न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य

0: विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1.

0: मो निज अजाणत मो मन बोधे ठीक से ही चाहू तथापि तम डाक मुझे इतस्त हो पड़ी
1: हेलो स्मिता
0: हेलो अरे आपण
1: भूत देखला पर एमती चमकी पड़ल जी
0: चमकी पड़बिनि आपण हठात एमती एठी
1: अरे एठी तो मो घर किंतु तमे एठी एमती एकुटिया छिड़ाई कोन देखुचो
0: ना ना एकुटिया नै रिंकू सेठी बाली रे खेलु छी ताकु ही देखुथिली
1: ओ ताहले मोर भूल हेगला तमे एकुटिया नहो सांगरे रिंकू भी अछि
0: हां नै बाली रे खेलिबा तार गोटे अभ्यास हे गेलानी सेइति लागि प्राय सब दिने मो एठी के आसु छी घरे तो आउ कहीं ना जे का संगे पठेदेवि ता छड़ा मत भी एठी छिड़ा है माँ का कथा मन पकेबा को बहुत भल लगे
1: अरे तमें सबुदिन एठी आस अथच आम घर आड़े थे बुले आसुन हाँ कहीं आसब अनिमंत्रित तो भाव के घर को थे अधे चलीगले तो बंद हो जाए
0: अरे ना ना सेमती भावत ना मुं घर टा देखनी तो
1: मीछ एकदम मीछ ये आस अथच मो घर देखिन यही तो ए रास्ता परे से जो हलदिया कोठा देखा जाउची सेटा त मो घर
0: हम जानि नथिले एबे जानि गेली सुविधा हले निश्चय जेबे
1: सुविधा हले माने ना माने आजि कोन किछ काम अछि
0: ना किछ काम नै जे
1: काम नै जे असुविधा कोठ रहला
0: कहिले त जेबे हां आपन को पाख को न हले भी आपन को स्त्री को पाख को निश्चय जेबे कृतज्ञता जणै पापै सतरे फलकु बाबू आपन मते जो परिस्थिति रे सहाय्य करि छथि से कथा माने पड़िले आपण पाखरे मुंडा नुआईवा को इच्छा हुए मने मने आपण को बहुत समय रे खोजिचे किंतु
1: ताउ ताउ ताउ से मनगड़ा कथा कोई किछ लाभ नै तमे मते केमिथि होरे खोजुथले से कथा मु ठीक जानी पारिचे सेइत पे तो किछ काम न थाय भी मो घर को जिबार तमरो असुविधा हो जाउचे
0: अरे ना आपण सेमिथि काहे कि भाबुचंते
1: ना मु किछ भाबुनी किंतु सत कहउचे तमे वर्तमान मो संगरे जदि एठु मो घर को न जाओ तबे मु भी आउ घर को जिबिन बस एठी बंध उपरे बसि रहबि
0: आपण जेतुले पिलांक पडि एमती जे दरलेनी मते जिबा को ही पडिबो
1: काम हासिल करबा को हेले बेले बेले पिला भी हव को पडिस
0: माने
1: ना किछि नै रिंकू को डाको जिबा
0: रिंकू ए रिंकू
2: कोन हेला अपा
0: शीघ्र आस
2: जाउ छी अपा
1: देखछो देखछो स्मिता अपार आज्ञा को शिरोधार्य करि से केम दौडु छी
0: भारी दुष्ट हो छी किंतु
1: पिला माने एमती हवटा भलो
2: कोन हेला अपा
0: देखिलु किए
2: किए
0: जानी परनु मां को नै जे स्मशान को जाइथिले
2: ओ फल्गु अंकल
0: हां नमस्कार कर
2: नमस्कार फल्गु अंकल
1: नमस्कार चलो स्मिता
0: हां चलंतु आरी को
1: एटा होची मो कुडिया
0: कोन कहिले कुडिया हां कुडिया नै त कर किंतु ए मार्बल पत्थर खंजा कुडिया थी खूब सुंदर दिसु छी
1: खाली बाहर उठा
0: माने
1: नै किछ नै अरे छिड़ा हल जे भितर चलो चकरा ए चकरा
3: जाओ जाइए आगे
1: हां कौन लग रही अरे इमिति अनिचु कौन के जानी परचू
3: जानी परचू जे किंतु
1: अरे बोका मु जहां को कथा सब बेले तते कहे सेई
0: मो कथा आपण
3: हां मां बाबू आपण को कथा सब बेले कोंती हेले केबे देखि नथिल त सेइत पई
0: ओ सेइत पई चिन्नी मथे चिन्नी परिलनी नै
1: हौ हे हे हबु पछे जा आगोदी कप चा नी गे
3: जाउ चा गे
0: आपण को स्त्री कण कोडे बाहर को जाई छेंते
1: हां हठात ए प्रश्न कोन डर मारुची
0: ना डर काहा को किंतु तांको कृतज्ञता जणै बेटा मोर प्रथम कर्तव्य
1: मु जदि कहे मु अविवाहित
0: माने
1: माने मुझे दी कहे पर्यंत मोर बाहागर हेनी
3: बाबू
1: चा नियो चा नियो स्मिता अरे एमती चुप हेगल जी
0: ना संचय हे आसलानी मु आसुचे एथर
1: हाँ एते बड़ घर ठारे एकुटिया रहुथिबा जने अविवाहित युवक पाखरे बसिबा को निश्चय डर लागथिबो
0: अरे ना ना सेमिति किछि नै
1: सेमिति नै त कोन
0: घरे अनेक काम अछि मते एकुटिया सबबु करबा को पड़िबो
1: ओके ताले पुनी केबे देखाबो ना एई टाइम सेस देखा
0: आपण जेबे चाहिबे
1: काली
0: चेष्टा करबी
1: चेष्टा नहि निश्चय

0: चारटा बेले मु एठी तुम अपेक्षा करथिबी।
1: रिंकू नमस्कार कर।
2: नमस्कार फल्गु अंकल।
0: नमस्कार। काली अपा को सांगरे धरी एठी आसीबो, एठी एई घास उपरे आमे क्रिकेट खेलिबा।
2: क्रिकेट?
0: हम
2: अपन को क्रिकेट असे?
0: ओ श्योर,
2: ताले तो मु निश्चय आसीबी।
0: तापरे संपर्क धीरे धीरे निबिड़ निबिड़तर हवाक लगला। प्रथमे घर, तापर नईकूल, परे पार्क, सिनेमा, क्लब,
1: शेषरे विवाह।
0: हाँ, विवाह।
1: किंतु ए विवाह हेतला कोर्टरे तम बापा मां को अनुपस्थित रे।
0: तार कारण भी तुम जानी छो?
1: ना,
0: मो बापा मां मते घृणा करंती, मोर बड़ लुकी को से माने घृणा करंती, आउ मोर व्यवसाय को मध्य।
1: किंतु काहे कि तुम एमती की व्यवसाय करो जे? तुम व्यवसाय कौन आज पर्यंत मुझे जानी पारे
0: कहीं तुम सन्देह हो? शुण स्मिता, मु चोरी करनी, डकायती करनी, कोकिन किंवा हीरोइन स्मगलिंग भी करनी, किंतु अदरकारी माल बिकी मु प्रचुर अर्थ उपार्जन करे। कहीं जान मु जाने ये दुनिया रे गरीब हवा सबुठ बड़ पाप।
1: किंतु तुम कि व्यवसाय कर फलकु? कोथि पई तमरो बापा मा तुमको घृणा करचंती? मु कोनो एते के जानि पर हकदार नै।
0: ना, मु थरे कहि छी, मनीष मन रे एमिति अनेक कथा अछि जहा कहि देले घनिष्ठ मित्र भी क्षण कर शत्रु हि जीव।
1: ओहो, ए युक्ति मु अनेक थरे सुनि छी फलकु। मु तमरो स्त्री, बंधु किंबा प्रेमिका हि निजे शत्रु हि अलगा हि जीवि। जदि तमे शत्रु किछि भूल करथाओ तबे तमको सुधारिवार दायित्व मोर।
0: स्मिता।
1: हां फलकु, कुह तमको मोर आण तुम्हें कि व्यवसाय कर? कहीं तुम बापा मा तुमको घृणा करते? कह प्लीज।
0: अरे कौन हैला कोहनु कहेगी?
3: रिंकू बाबू आउ नाती बा।
0: ओह माय गॉड,

0: कौन है कौन है मेंबर घर
1: एक्सीडेंट सर
0: एक्सीडेंट
1: रिंकू हटा दौड़ आसले रास्ता उपरको आउ ठीक सेति बेले कार ता सेपट रो
0: ओ पुलिस खबर पाइन तो
1: ना सर कार वाला लोक उडा को किछ माल दे देबरो से माने पळेले आ मु सबटा को लैबोरेटरी को नै जेछि
0: ठीक करछो ताको इमीडिएटली केमिकल लिक्विड भीतर पकाइ दियो हा सुनो
1: सर
0: जदि आखी दिटा भलो थाए तबे कारी रखी आजि संध्या सुद्धा बुर्ला हॉस्पिटल को पठेबार व्यवस्था करो स्केलेटन को ता कालि कि देखिबा
1: यस सर

0: रिंकु बाबू आसबुनि मा कांदे किछ लाभ नै
1: नै चकरा तू सेमिति को ना रिंकु मोर आसिबो निश्चय आसिबो
2: स्मिता स्मिता
1: रिंकु काय बोलगु मोरिंकु काय
2: स्मिता इमिति अधर छले चलिबो कथारे परा अछि संसार भितरे घर करथिले पत्थर पड़ले सोय भाग्य लिखन को कहे आड़े पारे स्मिता आज रिंकु चली गला चले आमे भी जीवा समय आसिले समस्ते कालर कबलित हे
1: रिंकु मत छाड़ी कुआड़े जीवनी ना
2: स्मिता स्मिता प्लीज
1: मत टिके रिंकु बाबू को नहीं चल फलगु मोदी टिके शेष थर पर आखि पुरे देखी
2: ना, स्मिता, ना। देखियो लाभ कौन थरे खाली देखने तो रिंकु फेरी आसबन बर तार से क्षत विक्षत शरीर देखिले तुम मन में आज बेसी दुख हम
1: ना फलगु मन दुख हम कहीं सी तो तार माँ पाख को चली।

0: ना एका नुहे माने
1: छान स्मिता समद्रा
2: हरि संध्या आसस आमे तते ही अपेक्षा करितिलु
3: नमस्कार फल्गु बाबू
0: नमस्कार बसंतु छेड़ाले खाइकि
2: बसिबा पई त आसीचि न बसि कोन पळेबी
0: अच्छा नियंदु ई चाडा दीवा कर देंदु
2: नो थैंक्स मुई संगे संगे चाय पी आसीचि तो मिस्टर को संगे रेणिलुनी
1: तांकु समय कोंठी अछि भारत सरकार को क्लास वन ऑफिसर तो
2: समस्त एका परि मते वर्तमान कहथिले एका एका काश्मीर बुली जाऊ
1: काश्मीर पुरी एका
0: कहीं काश्मीर कौन कहीं एका जाऊ नांदी
1: जाऊ चंती पर्वत चढ़ीबा पाई
2: ए तू चलना संगे रे दी जन जाक जाय बुली आसीबा
1: काश्मीर अरे बाबा मते से सनिपात धरि नबो काली बारटा सुधा मते जाय गांरे पहुंचबा को पड़िबो सानो भोनी रो बाहागर हटा ठीक होई जाय छी तो टेलीग्राम आसी
2: ताले तू गांरो फेरिले जीबा
1: धत तू काश्मीर काहे के जीव कहिलु मन फुर्ति करबा पाई ना मो संगे हम गां को चल देखिबू हम गां काश्मीर थार कोनोसी गुण रे कम नहीं
0: वाह वाह वाह वाह बढ़िया प्रपोजल बुलियो को बुलीबा हो ताचरा बाहागर भोजी तो ही मिल जीव
1: चुप काहे के रहिलु कोन कहनु कह
2: मो आउ कोन कहबे
1: ताहले रेडी टुमर मॉर्निंग सातटा पूर्वर कटक छड़ियो पड़िबो
2: मोर कोन अछि तू जेते शीघ्र आसी परले हला
1: ठीक अछि ताहले मो ठीक सातटा बेले हॉर्न मारी।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: बैंकिंग क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: सेसरे शिल्पी गुलपिता मिश्र शिल्पी गायचंदी राजा अरदेन्दु शेखर महांती रचनारू।

करिवे पंडित मंडली माया नाविक को देखी करी जत्ते बेले गोपांगना माने समस्त एकत्र भाव रे बसिबा पई कि आरंभ करले नाविक एठी कहिले हे गोपी माने सुन नाबटी मोर ददरा ये न ददरा नाब उपर तुमे जदि समस्त एकत्र भाव रे बसिबो मंदिया जळ पसी जीव नाबटी बुड़ीबा तुमे मध्य बुड़ीबा।

कार्यक्रम र एक त नै छु आई मिलन की रात चलचित्रहरु कण्ठदान गरिछन्ति उदित नारायण एवं अनुराधा पडवाल गीतटिको सुनिबा पई अनुरोध करे श्रोताले नळपई केन्द्रपडा मदनपुर रु आम श्रोता बन्धु विश्वभूषण विश्वाल।

0: ସ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ତ ଅନେକ, ହେଲେ ସମୟ ସୀମିତ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ। ତେବେ ମଞ୍ଜୁଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया

0: में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु।

0: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सुकन्या जेना मुख्य संवाद राज्य रे शिल्पायन वृद्धि ओ स्थानीय लोकंक नियुक्ति उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती कहिले मुख्यमंत्री पारादीप ठारे 65,000 कोटी टंकार अत्याधुनिक नूतन समन्वित इस्पात कारखानार कले शिलान्यास वृद्धि पाउथिबा ग्रीष्म प्रवाहकु दृष्टिरे रखि सतर्कता अवलम्बन करिबाकु देशवासीकु प्रधानमन्त्रीक परामर्श ओडिसार खालिथिबा गोटिए राज्यसभा आसन पई आसन्ता मास 18 तारिखरे हेबो उपनिर्वाचन एवं चलित शिक्षावर्ष स्नातक पाठ्यक्रमरे नामलेखा पई आजिठारु आरम्भ हेउछि आवेदन प्रक्रिया राज्य रे शिल्पायन वृद्धि ओ स्थानीय लोकंक नियुक्ति उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती जगतसिंहपुर जिल्लार पारादीप ठारे आजि 65,000 कोटी टंकार अत्याधुनिक नूतन समन्वित इस्पात कारखानार शिलान्यास करी मुख्यमंत्री कहिछंती पूर्व भारतरे पारादीप विकासर मंग धरिब एही प्रकल्प ओडिसाकु भारतर इस्पात राजधानी भाबे गढ़ि तोळिबा सहित पारादीपकु विकसित ओडिसार केन्द्रस्थळी भाबे परिचित कराइब कारखानार शुभारंभ परे 30,000रु ऊर्ध्व नियुक्ति सुयोग सृष्टि हेबो द्वितीय पर्यायरे उत्पादन क्षमताकु आहुरी वृद्धि करिबाकु लक्ष्य रखाजिबा सहित 60,000 कोटीर पुंजी निवेश कराजिबो एहाफळरे स्थानीय अंचलर उन्नति सहित आनुषंगिक शिल्पर विकास हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति
1: आजि दिनरे एठी हजार हजार संख्यारे अर्थात पाखापाखि जेतेबडी प्लांट संपूर्ण समाप्त हेबो 25,000 रु अधिक युवक युवती टेक्निकल नॉन टेक्निकल समस्त प्रकार ये सुविधा एवं ये जॉब एम्प्लॉई ताको पाई ये हबो एवं डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री आंसिलरी इंडस्ट्री मध्ये या सहित ए अंचल को जेबडी भाबरे आसी पहुंचिबो ताहा निश्चित भाबरे अंचल अधिक समृद्ध हबो 2028-29 रे जहां शिलान्यास करिवार अवकाश थिला आमे आज 2026 रे शिलान्यास करलु एवं 2029 बलकु ये प्रोडक्शन स्टेज रे आसी जाइतिबो एवं तारो शुभ उद्घाटन मध्ये करिवो आमर ये सरकार समय रे ये गोटी आमर सरकार रो बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति
0: कार्यक्रमरे शिल्पमंत्री संपद चंद्र स्वाई जोगदे कहिछंती सरकारक नेतृत्वरे द्रुत शिल्पायन माध्यमरे पूर्वोदय स्वप्नकु वास्तवर रूप मिलुछि नवीकरणीय शक्ति फार्मा ओ पेट्रोकेमिकल्स आदि विभिन्न क्षेत्ररे राज्यर निवेश वृद्धि पाइबारे लागिछि 2030 मसीहा भारत 300 मेट्रिक टनर इस्पात उत्पादन लक्ष्यरे ओडिशा 50% योगदानकु पूरण करिबा दिगरे कार्य करुछि शिल्पायन अनुकूल परिवेश सृष्टि पई सरकार समस्त प्रकार पदक्षेप ग्रहण करुछंती श्री स्वाई कहिछन्ति एही कारखानारु वार्षिक 13.2 मिलियन टन रो इस्पात उत्पादन लक्ष्य रखा

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुझाव भेजा है, लिखते हैं
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए।

0: जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
0: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
0: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम किस फूल की बात करेंगे।
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
0: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुर्बंध से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
0: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी,
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है आप हमारे ईमेल

0: मेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के

0: जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
1: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
2: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
2: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
1: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
3: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
4: क्या बात है,
3: सुनकर ही जोश आ गया।
4: हाँ
3: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। समझ कर रहना भाई।
4: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है।

0: है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप

0: दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो, दुर्गा माता की जय, हमला माता की जय।
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
1: हमला करो दुर्गा माता की। जय माता की। जय। चलो बच्चे।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: सामजी, सामजी आप मत जाइए।

0: मैं जाता हूँ।
1: नहीं नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
0: नहीं
1: लेकिन साहब जी, मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मैं जा रहा हूँ।
0: साहब जी, साहब जी।
2: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
2: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: शुणुले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचारित हो 308.6 मीटर तथा 972 किला हर्ज जगे।
4: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयारितला राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
5: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
6: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: कोन रीमा घरे सोलर लगाई देला?
8: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
7: चिंता नहीं माने?
8: हाँ अपा, सोलार करी देले मासक को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जिबो।
7: सतरे?
8: खाली सेति कि नु? हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
9: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। pmsurjaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
10: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने किसी उपाय
11: अंशुघात नई दिन 11 अपराह 3 पर्यंत टाण खरारे गृहपालित प्राणी मानंकु बाहर को न छाड़ी गुहाळरे किंबा छाई स्थान रे रखंतु।
10: पशु पक्षी को स्वच्छ ठंडा पानी पीबा को दियंतु एवं प्राणी को विश्राम स्थान बा गोठरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु।
11: गुहाळ कबाट और झरकारे ओदा अखा झुलाई मझिरे मझिरे पानी सिंचन करंतु।
10: बुला पशु और पक्षी को अंशुघात रक्षा करने घर आगे जलकुंडर व्यवस्था करंतु।
11: अंशुघात हेले पशु पक्षी माने किछि खांती नाही, पाटी बाटे निश्वास नेबा सहित धक्के हुंती, पाटीरू और नाकपुडारू फेण बाहरे और समय समय जीभ पदा को बाहरी।

0: ए जीवन सारे भारी बढ़िया आपण को प्लान रियली सर बहुत बढ़िया।
1: अच्छा कौ कथा दीप्ति रंजन
0: सर आज हमला कथा कही किछि भी सुराग पाइले नी सर देखंतु ना सर टीवी टिके ऑन करंतु
1: दीप्ति
0: सर देखंतु
1: कौन देखिबे सबुदिनिया घटनार पुणी नुआ कौन से तो लोक माने मरीजिबे पोक मच्छी परी घर गुड़ाक जलीजिबो रक्त आउ रक्त बस
0: हाँ जी सारे किंतु एथर किसी नुआ झटका थिला देखंतु सारे हाँ सारे टीवी परदारे भी पूरा पूरी प्लान रो उत्कृष्टता जाना पड़ी जाऊची केही भी पारिबे नी टेरे थैंक यू सारे एमिति रे गां गुड़ाक उपरे अटैक कले आम लाइफ रिस्क थाए किंतु आपण को प्लानिंग झाकास सर झाकास।
1: अच्छा दीप्ति तम खुश देखे सतरे मु आखे टीवी पर्दा को टाणी जाउछे बुझलो
0: देखु चंदी सारे वाओ
1: गांटा खूब सुंदर ठीक ना दीप्ति
0: सारे देखंतु सेई जो बरगछ तळ घर

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मन रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आज मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର 30ତମ ଭାଗ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 525,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 30,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायां

0: करणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम् यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः अंकीय संगणकाः दूरभाषायन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मू छात्रान् स्वकीय विचारैः नवोन्मेषेण परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान् तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी कटक शुणु आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र प्रस्तुत उज्ज्वलम देश प्रयोजना एवं उपस्थापना संतोष पिंह।

नमस्कार, न्यूज हेडलाइन सह मु सुकन्या। केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट बैठक संपर्क में विस्तृत सूचना दे कहते भारत विश्वर सर्वबृहत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम मध्यम प्राय 80 कोटी लोक मासिक राशन सहायता प्रदान कर साधारण बंटन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर सरकार 25,530 कोटी टंकार सार्थक पीडीएस योजना को अनुमोदन कर स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया आईन अनुयायी वैध बोली सुप्रीमकोर्ट कहते आसाम विधानसभा यूसीसी बिल 2026 पारित होशर तृतीय राज्य भाव आसाम लागू पूर्व उत्तराखंड और गुजरात यूसीसी लागू होता सीबीएसई नवम दशम तीनोटि आंचलिक भाषा बाध्यतामूलक प्रसंग में धार्य पॉलिसी उपरे रहितादेशपाई सर्वोच्च कोर्ट मना कर 2037 मसीहा एसीय इंडोर आथलेटिक्स चैंपियनशिप सिक्किम्र प्राकृतिक परिवेश को बंचाई रखा आमर कर्तव्य बोली सिक्किम विश्वविद्यालय समावर्तन समारोह उद्बोधन दे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते देश में इबोला भाइरस जनित कौन मामला दृष्टि को आसीना बोली केन्द्र सरकार पक्ष इबोला को नहीं व्यतीव्यस्त न होवापाई जनसाधारण को परामर्श दिया लोकभवन अभिषेक हल्ठारे युव संगम छात्र छात्री राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी भाव विनिमय कर राष्ट्र निर्माण एवं स्थायी विकास तथा सूचना प्रसारण एवं जनसाधारण सचेतनता सृष्टि करुववर्ग गुरूत्वपूर्ण भूमिका रही राज्यपाल बर्तमान न्यूज हेडलाइन्स परवर्ती न्यूज हेडलाइन्स शुणिपारे रात 10 समय।

0: You have rivers, you have forests, you know, you have wildlife, you have performing arts, you have art architecture, you have archaeology. माने गोटे ओपन मेनु जहाँ दरकार गोटे टूरिस्ट को आम पाखे अच्छी बुझे आम तार पोटेनसीयल एवं किसी वर्ष होगा ये सरकार आसला या पूर्व सरकार से इको टूरीजम फूरीजम करें एवं कनेक्टिविटी सब बहुत भल अच्छी सरकार गोटे नुआ टूरीजम पॉलिसी आनी मैंने मोर कह कथा जदि आम ओडिशार फुल टूरीजम पोटेनसीयल को यूज करू टूरीजम गोटे कथा जोटा बहुत बड़ गोटे फोर्स मल्टीप्लायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत करे द्वितीय कथा इट इज ए ग्रीन इंडस्ट्री किसी पॉल्यूशन नहीं बुझे बहुत लोगों को इन्वॉल्वमेंट हुए ताको जदि आम बहुत बड़ आकार गुरुत्व दबू देख केरल कौन अच्छी ओनली बैकवाटर्स गोआर कौन अच्छी गोटे भी गोआर एमतिया बीच ना जो ओडिशा बीच को आपन कंपेयर करें लोक कहीं एत जाऊे आम पाखे सबकि अच्छी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सरकार प्रयत्न कर मत लगुच बहुत किसी दरकार मान गोटे बहुत बड़ आकार टूरीजम पोटेनसीयल को ओडिशा रो आम डोमेस्टिक सेक्टर वर्ल्ड वाइड आम फॉरेन टूरिज्म फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम आज्ञा एम कंपेरेटिवली टू द अदर स्टेट्स बहुत कम नंबर इन सब जिन पाखे अच्छी कर डबल इंजन सरकार देखो डबल इंजन सरकार गोटे एमटी स्वीडनिम आज्ञा जो सरकार ना कौन डेवलपमेंट हूं कौन मोदी जी कहते ना ना ये मो सरकार ना मो पैसा देवे से बेस पैसा पाउंटे जो बीजेपी सरकार नुहे से कौन पैसा पा ना बहुत डेवलप होती डेवलप जब सेन्ट्राल एसोसिएशन डेवलप कमी हे कि मोर कह कथा खाली मुझा विषय जब कह आमको बहुत किसी कर सरकार भी बहुत आशा अच्छी एफर्ट्स भी नौ कहूनी कि सुड एक्सेलरेटेड गोटे एमतिया सॉलिड प्लान दवा कहीं आम जाच आज सब बड़ फैक्टर आम अनएम्प्लॉयमेंट जदि आम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दबू पॉपुलराइज करू बहुत बड़ आकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम नंबर वन सेकेंड कथा बहुत गुरुत्व दिए आप माइनिंग करेंगे इंडस्ट्री करेंगे आज डेट रे क्लाइमेट चेंज रे प्रदूषण हो यू नो तार एफ्लुएंट हो सब आप करेंगे किंतु एथरे किछि नाही इट्स ए ग्रीन इंडस्ट्री विच केन आप रूरल रे करि परिबे सेतिपई आमे ताकु जदि बहुत गोटे दबू ए स्टेट रो इकोनॉमी टू अ ग्रेट एक्सटेंट मु सबटो बड़ फैक्टर देखे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रे
1: सर एबे दिटा कथा प्रधानमंत्री सबुबेले कहउछंती कि पूर्वोदय विकास रे सूर्योदय उदय हम तो आप स्वीकार कर
0: लुकिस्ट पॉलिसी आरंभ रही अच्छी लुकिस्ट सब बेस देखते गत बार वर्ष रियल डेवलपमेंट हो मणिपुर को छाड़दा एथनिक ट्राइबल नर्थ ईस्ट रे डेवलपमेंट हो जाए आज्ञा मुझे बुल देखे गोटे एथनिक प्रॉब्लम मणिपुर कमी सल्व जदि सेटा एथनिक प्रॉब्लम सेठी अलग अलग ट्राइब अच्छे फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत अच्छी आज्ञा आम जानते अक्रॉस द बॉर्डर इंटरफेरेंस हो शत्रु देश चाइना बर्मा थ्रू इंटरफेयर करुच्चे सेंसिटिव एरिया किंतु से लुकिस्ट पॉलिसी रे कहीं से कही आगु ईस्टर्न सेक्टर को टिके इग्नोर करा जायतिला पूर्व सरकार जो गुडा थिले मु कहिबे नै किंतु जेते कि गुरुत्व दवा थरा से दो न थिले आगे इट वाज मेनली कंसंट्रेटेड साउथ रे से माने तमिलनाडु कर्नाटक से गुटे वैल्यू इकोनॉमी थिले करला आउ से पंजाब ए सब सेक्टर थिले आगे किंतु जेबे टू ए सरकार आसे लुकिस्ट नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत हिची भारत सुनंतु ओडिसा गुटे यूनिक जिंस आगे मु आपन को टूरिज्म पोटेंशियल कहिले आज डेट रे ओडिसा रो जो नेचुरल रिसोर्सेज अछि मु भारत नुहे पृथ्वी रे बदी एमती किसी भूखंड ना एमती पृथ्वी रो भूखंड ना जोटा माने नेचुरल रिसोर्सेज रे हमको माने भगवान जो एंडोर कहते बॉक्साइट मैंगनीज क्रोमाइट आयरन ओर कोल माने सेमी प्रेशियस स्टोन्स आप नेचुरल रिसोर्सेज रे बॉक्साइट लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड दुनिया आगे सरीज आमर थी मैंगनीज क्रोमाइट मु कह जिन आम पाखे ना माने एमतिया को आम को लेवल एक्सप्लोर करुचु माइनिंग रे भी बहुत किसी चली आगे आम वी शुड बी द रिचेस्ट यू नो स्टेट इन द वर्ल्ड मु कह कहीं आम गरीब रही कौन ना आम पाखे आप देखुना आप बहुत देश कोयला सरी जाबी नुआ पाउच
1: सर आप गोटे कथा कहले ये सरकार रे आमर सीमा सुरक्षा हो जातीय सुरक्षा को सबठ अधिक गुरुत्व दिया जाउछि आ सरकार गत मार्च 31 तारीख सुधा देश को आतंकवाद मुक्त भाव घोषणा करले तबे सीमा सुरक्षा हो आतंकवाद विरोधी पदक्षेप को आपण किपरि मूल्यांकन
0: देखो सीमा सुरक्षा प्रति आमे ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଶଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଲି ସବୁ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟ୍ ପଠାଇଥିବା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ।

0: मालोती बुटोलो
1: बुटोलो
0: मोनोर मालोती बुटोलो
2: एबे द्वितीय अंतरटी लेखो
0: मोनोर
1: मोनोर
0: कोरोनी रे हुरोर हुरोर पापोरी रे
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी
1: आजी
0: हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा हुंदोर
1: हुंदोर
0: खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि कौनो
1: कौनो
0: नाहुआ
1: नाहुआ
2: गीतटकू तो सिखिनला पिला माने एबे चलो गीतटकू आमे ताळ सहित सिखिबा।

0: ଶେଷ ହେଲା ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଓମପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि

0: उत्पादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम

0: लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंश

0: कोचिंग ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
1: हैं? द मिनिस्टर सेड द स्कीम विल वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू 81.35 करोड़ पर्संस कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर दैट फूड ग्रेन्स रीच एवरी नीडी पर्सन इन द कंट्री ऑन टाइम थ्रू पीडीएस। In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat waves sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganga Nagar recorded a maximum temperature of 48.5.

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को

0: इवेल्युएट किया था, उसमें आकलन किया था। और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने का। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल, तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है, अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे। एक

0: जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद, खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिराए गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए सीए जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती,

0: सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिये, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का एक कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो बोर्ड बोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे बोर्ड बोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इस पे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
3: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
3: 1983 में ये जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं।

0: या उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टूडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण

0: सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसकी समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसीज की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, एक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा

0: पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: एथल जाए कार्यक्रम रिले कर प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली। आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र।
5: नमस्कार, बर्तमान मुख्य संवाद सह मु सत्य रंजन महापात्र। केन्द्र क्याबिनेट्रे सार्थक पीडीएस योजना जारी रखा निष्पत्ति, सरकार खर्च करेंगे 25,530 कोटी टंका। पारादीप्रे जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांटर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में मौसुमी वर्षार मुकाबला उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार समीक्षा बैठक अनुषित। उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव बलांगीर जिला गस्तर जा बंद रही चीनिकल परिदर्शन करने सहित खुबशीघ्र चीनिकल पुनरुद्धार करम कर गुरूत्वारोप। ओडिशा राज्यसभा उपनिर्वाचन निमन्ते भारतीय निर्वाचन आयोग पक्षर् प्रकाश पाइला विज्ञप्ति, आसंता मास 18 तारिख भोट ग्रहण। भुवनेश्वर राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी अध्यक्षतार मलकानगिरि जिलार जमिजमा संबंधित विभिन्न समस्या और उन्नयनमूलक कार्य नहीं एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित। सेप्टेम्बर सुधा बकेया जमिजमा मामला बंदोबस्त करने को निर्देश। भारतीय सेनारे निजुक्ति ऑनलाइन साधारण प्रवेशिका परीक्षा सीईई आसंता जून 1-12 तारीख पर्यंत अनुष्ठित हेबो। कोलकाता निजुक्ति जून में सिक्किम पश्चिमबंग एवं ओडिशार 17 शहरर 26 केन्द्र में अनुष्ठित हेबो परीक्षा। राज्य में 2026-27 शिक्षावर्ष स्नातक पाठ्यक्रम नामलेखा लगी आज अपराह 4 एकक आवेदन फर्म साम्स पोर्टाल उपलब्ध। जून 10 तारीख पर्यंत आवेदन समय सीमा धार्य होता बेले जून 17 तारीख में प्रकाश पाइब मेधा तालिका। एवं राज्य विभिन्न स्थान में कालबैशाख्य जनित वर्षा, आसंता 24 घंटा मध्य वर्षा होगा नहीं समस्त जिला को सतर्क सूचना जारी। वर्तमान पर मुख्य संवाद समाप्त करवर्त मुख्य संवाद शुणी राति 11:05।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में

0: आकाशवाणी कटक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा।
0: कार्यक्रम प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। ए कार्यक्रम डीटीएच एवं न्यूज ऑन एयर आप माध्यम रे मध्य आपनो सुनि परछन्ते।

0: कही कही थकी गलेनी कौन हला नुआ किट बैग दरकार
1: त प्रथमे कैप्टन को कह न सुनिबे त मैनेजर को
0: करेक्ट
1: त एमिति ही प्रथमे अभिजोग बैंक रे करंतु 30 दिन भीतर उत्तर किमा समाधान प्राप्त नहले सीएमएस पोर्टल रे अभिजोग करंतु त प्रथमे बैंक तापर सीएमएस पोर्टल नहले अभिजोग हेबो नामंजूर जिबा निया सिगलाना किट बैग
2: आरबीआई कहे
3: प्रथमे निज बैंक तापर आरबीआई ओम्बुड्समन

0: So your name is R.B. Samanta?
1: Yes, Raghuveer Samanta. And yours?
0: Joe.
1: Joe? Eta bodhwe tomar chatma namo.
0: Manisha ko chinima pe namati darkar to. Now kon pe?
1: Tome kete porjanto patho padicho?
0: You are asking a lot of questions.
1: Karan tamuk janiba mor agro achi. Ethe tomar kichi apatti achi?
0: Mo jone science graduate. Aau kichi pacharibar achi?
1: Pacharibar to anek achi. Hele, tome kon se sabur uttar dabo?
0: Kahiki pacharibo? मो कार्यकलाप कौन पर परिचय दौनी
1: देख तुम्हें जदि साधारण जन डकायत होता तो तेरे कौन प्रश्न तुमको पचार दरकार हाँ ना कि तुम्हें नुह जदिओ जेकोसी खूनी और डकायत तुम क्राइम किसी कम नुहे तुम कड़े गोटे महत उद्देश्य रही आज जिते मो सौभाग्य को तुम मोर अतिथि तुम से महान आइडियोलोजी विषय में मत किसी धारणा दे पार माने अन्न प्रकार कहले मत तुम्हें बुझे पार तुम्हें जहा जहा सब कर ठीक
0: मत परिहास कर
1: मो कथा गुडा तुमको परिहास लगुच सारा देश आज तुम मान आतंक अत्याचार थरहर अथच तमे कहीं सब कर पचारिटा तुमको परिहास मन हो
0: डिबेट कर जगह नुह कि मु खूब गोटे वक्ता नुहे
1: तुमको वक्तृता कर
0: जे चरमपंथी निर्दय मु मनीष मारी पारे बस
1: लड़े सैन्य मैंने भी मनीष मारती एवं यही अपकर्म पर विभिन्न पदवी और उपाधि भूषित करा जाए अथच देश भितर यही काम पर नरहत्या अपराध में जड़े लोक दंडित तो हुए तेणु कामटा बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ मोटिव बिहाइंड एक्शन घरे रास्त जाऊ निरीह निरस्त्र लोकटी को तुम्हें कहीं मार देर मस्ट बी ए वैलिड रीजन व्हाय कौन करे माने
0: व्हाट इज योर प्रोफेसर
1: आई एम ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट
0: आम पे गोटे काम कर देबे
1: कौन काम
0: गोटे टेलीफोन देखो तो आपण हमको सहाय्य करे आमे एतु शीघ्र चल जाई परिबो एतरे आपण कर भी मंगल
1: तमे निजो मंगल विषय रे चिंता करो मो पे व्यस्त हवा दरकार नै आ तमे जदि भाव थाओ तमे पॉकेट रे पिस्टल अछि बोली मु डर रे तुमको सहाय्य करबी तबे सेइटा तमार भूल धारणा
0: अरे

0: तू एठी की चली आसिलु
1: बेस्त हम दरकार ना पछपट दरजार मु चाबी लगे
0: आगे रास्तार अवस्था लक्ष्य कर खाली पुलिस नुहते पारामिलिटरी फोर्स भी रास्ते छाई गले
1: पछपट अवस्था भी तद्रूप बीएसएफ जवान आउ कमांड बाहिनी भर्ती आम जनता पड़ जाइए जो एठू बाहरी उपाय ना
0: के दूर से
1: ए घर पछपटे अनाबना जंगल टी अच्छी प्राय अध किलोमीटर हम तारी भीतर से पैतरा मार्चंती
0: बाट पर्यंत तू जाई
1: जंगल मझी पर्यंत जंगल से पाखे नई
0: शेष पर्यंत से जीवा बाट हो पारे
1: पागल हेलु ता भीतर केते संख्यार कमांडो अछंती की जाने
0: केते संख्यार थाई परे तुमली भाबुछु
1: काहेकि तू कोन से मानकु मुकाला करिया कथा भाबुछु
0: जदि आउ किछु उपाय न मिले तबे ताय होय त करियो पड़ी परे
1: तो मुंडा फुंडा खराब हेइछ ना कोन सेठी सिक्युरिटी फोर्सर छाउनी पड़छि जानु
0: आउ गड या भीतर दिन पर दिन लुचि थबु बारी वक्त पड़िवर इच्छा
1: हेले किमिति बाहरिबा से मानकु हाथ रे ऑटोमेटिक राइफल आउ आम हाथ रे दीटा पिस्तल
0: पांच ट आरडीएक्स बमर शक्ति किछ कम न होय किम ज्योतिपुर आर्मी जिनस देखी नथिबे
1: अच्छा जेल साहेब को खबर दी हुंता नी से जमी आमको मुकुल
0: किंतु केमिति खबर दिया जीवो
1: टेलीफोन रे अच्छा तांको टेलीफोन नंबर तू जानू
0: टेलीफोन व्यवहार करबा आबा पे विपदजनक हे पारे
1: अरे आमे काहे के टेलीफोन करबा आउ कोन कहि नाते
0: आउ के मिस्टर सामंत
1: मिस्टर सामंत से के
0: आमे जहा कर आसर नेचो ताना मिस्टर आर भी सामंत रिटायर्ड सिविल सर्वेंट
1: तो ताको टेलीफोन करबा कहितुलु
0: कहितिले हेले से आबो कथा रखिया बले मन होनी
1: नाको ऊपर गोटे घुसी बसाई देले तो बाबा जे से रखिबो
0: ना तू तो सेंत किछ करिवनी
1: काहे की
0: तो मिस्टर बा मिस्टर सामंत दर हाथ दबुनी
1: हाथ तो देबिनी हां से मारे को तो सासु ससुर होती अरे काहे से मान को तो झियो पियो कहि दिसु नाती
0: तू जानु किम एमबीसर लीडर हो मु अबेटा तो प्रति मोर ऑर्डर अब बेसी बक बक नहीं बैग रे कोन छि बाहर कर मते भीषण भूख लागिरानी
1: बैग भितरे बोमा छि ने
0: हा अरे रागु छु काई कि ए इतिकि
1: सेतिकि
0: से पछ पटे एका एका सार दे थबु आ आसीबो कोठो
1: मो आदु खाइनी काली राती रु से पावरटी खंड का एमति पड़छि
0: एटा तो जणो को भी होबनी
1: अबे तू खा मते भूख नहीं
0: अरे यार मरीबु तो गुली रे मरीबु न खाई मरीबु काहे की ने एटा को 50-50 कर दवा धर
1: ओहो कहली ना मते भूख नहीं
0: भूख अछि मु जाने अरे जाब देखा जीव तू एंती व्यस्त हो छु काहे की
1: केमिति व्यस्त होबिनी एठी हमर रहिबा 4 घंटा हेगरानी अथच तू किछि चिंता करुनु कोन ना लीडर
0: मु किछि चिंता करनी बले तू केम जानलु ए देख मो नोटबुक देख जिल साहेब संगे कोड कांटेक्ट करिया पे मु चिट्ठी ड्राफ्ट कर सारी
1: किंतु टेलीफोन करिबो किए तू तो कहुचु सामंत आम कथा रखिबनी आउ ता देहरे हाथ देबा पई तू भी मना करचु तबे
0: देखि दुनिया रे सब मनुष्य समान नहते तू जे मेथड रे कथा वार्ता करिया पई चाहुचु ता एठी काम दबनी
1: तबे तू आउ किछो मेथड कथा चिंता करचु ना कोन
0: सामंत पाखरे किछ मेथड काम देला भली बने होनी से गोटे अलग प्रकार मनुष्य तू देखुचु से बाता स्त्री आमको टिके भी डरु नहते
1: सही है तो मु देखुची
0: किंतु मोर विश्वास से आमको सहाय्य करिवो सबुठ बेसी सहाय्य करिवो
1: केमिति जानलु
0: मनुष्य चरित्र को पढ़ी अभ्यास कर तू भी जानी परिबु के
2: अरे एठी चुपचाप बसी कोन करछ
3: भोको हेला ना नहीं
1: से कोन
3: खाद्य तुम दुई जन को पाई तुम्हें खाओ मु तुम पाई पानी आंछी
0: दे आरंभ कर
1: आमे सब खाइबा उचित बोली तू भावुचु
0: उचित रे गई की कोन बिसो बिसो बिसाई तू बोली भावुचु अरे नाही यार ए देख मु खाउची
1: जो
0: अरे
1: जो,
0: अरे जो हतरम धर चुका है जे
1: नाही जो ना ए खाद्य तू खाई परबुनी
0: की निर्बोधतार गोटे सीमा थाए किम मु देखु छी तू से सीमा टपी करली मो हाथ छाड
1: नाही
0: देख मते भीषण भूको ए खाद्य बासना रे ना मो भूको 4 गुण बढी गेलानी
1: निर्बोध मु नुहे निर्बोध मु नुहे जो निर्बोध तू तू भूली जाउछु जे कहारी घर किसी खावा आमको पूरा निषेध अच्छी
0: निर्देशनामा जो मैंने जारी करनीष चरित्र संपर्क खूब कम जानी से धरी नहीं सब मनुष्य आम शत्रु आम खाद्य से विष मिसे पारती कि तो निर्भर ए खाद्य खाई
1: ना मुझे खाद्य खाइबि
0: ठीक अच्छे न खा मु खाऊ
3: तोर कौन है तू

0: एका तुम्हें बचिव आ समस्त रास्तार कुकुर पर गुड़ कर मारिब ना
1: सीता ना सीता प्लीज
0: बस रे जाउथिबा निरीह मणीस गुडाकु बस रु घसारी आनी गुड़ी रे छाई देबो लोकों को घर भीतर पसी पिला बुढ़ा स्त्री लोक समस्त को निर्विकार खून करिबो काहे कि को अधिकार
1: रे सीता सीता प्लीज डोंट बी इमोशनल प्लीज
0: ए फोटो को देखु छ देखो देखु छ याकु आज तार जन्मदिन आज जु ताको 23 पूरी 24 चले थाता कोरे गला छी कोरे गला
1: पानी
2: नियंतु
3: आंटी कांदा नहीं आंटी मैं घर को जीवी नहीं।

0: मु भावुचि आम एठु चली जाऊ उचित एठि आ रहिबा संभव नहे
1: आउ दुई चारि घंटा एठि रहिले मु तो पागल हो जिबी
0: पछपट जंगल रास्ता गोटे रिस्क नबा
1: बहुत बड़ रिस्क
0: जीवन टाक तो आम पकेट धरी बुलुचु चिंता कौन तो अपेक्षा कर मु पछपाक रास्ता टिके देखि आसे
1: अच्छा बंटी बाबू बंटी बाबू सुनी बनी
2: कौन
1: एठी कास
2: नाही तुमे मारिबो
1: नाही मोटे मारिबिनी आसो
2: कौन
1: अच्छा बंटी बाबू आंटी कौन करछंती
2: सोई छंती
1: आउ कांदु छंती
2: ना
1: बंटी मु तुमको मारी छी ना तमे मत मारो
2: ना
1: मन इच्छा मारो
2: नाही मु मारिबिनी
1: काहे के
2: तुमको काटिबो
1: काटू तुमको जे काटिला ए मुंगाल देखुचे तमे मारो
2: नाही मु मारिबि नाही
1: ओ बंटी बंटी बंटी बंटी घर को जीव
2: नाही
1: संध्या लानी तुम डाडी मामी तुमको खोज नथिबे घर को जीवनी काहे की
2: आंटी मना करछंती
1: काहे की मना करछंती
2: तुम्हें मारिबो
1: नाही बंटी नाही मु मुठे तुमको मारिबिनी
2: सत्य कहउछ
1: सत कहउछ जीव
2: कबाट सिकुड़ी लगा जायछि
1: मु सिकुड़ी खोल देबी तमे एकुटिया जाई परिबो त
2: मैं द्वार मुरे छिड़ाले मु चल जिबी
1: ठीक अछि चलो जाओ मुझे छिड़ाई टाटा बंटी टाटा टाटा टाटा
3: बंटी को छाड़ी देलो किंतु से जदि तांको घरे कहि दिए
1: कहू आमे ओ बेसी समय एठी रहबुनी
3: केमते जीव
1: जो पछपट रास्ता देखिया पई जाई छी सेई बाट आमे चल जीवु
3: पछपट बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स अछंती
1: आमे जानु तेबे अंधराम को किछटा सहाय्य करि परे
0: ना से संभावना नाही चारि पांचटा सर्च लाइट अनवरत जंगल सारा बुलुची जंगल टा तो सहज खूब पतला आवे लाइट दिन भली तोफा
1: अच्छा जो क्रॉलिंग कर जीवा
0: क्रॉलिंग करी गोटे किलोमीटर पण ये सर्च लाइट तले इम्पॉसिबल
1: मु किंतु बंटी को छाड़ दीछि
0: कौन करिछु
3: केम बंटी को छाड़ दे छथी मो घर भीतर आसला बेलु के ताको कबाट खोली हाथ हली टाटा करछथी जा हो सिरिस्तान कमांडन को छाती पिंजरा तळे हृदय ते थिबार प्रमाण मिलला
0: तू तू सतर गट हुंडा इडियट अरे मूर्ख मु फेरिया पर्यंत अपिया करि पालुनी
1: जा अब देखा जीव तू मित्र आगुछ कहि की तू तो निजे कहिलु जीवन टा को आमे पॉकेट रे धरि बुलुचू एबे रिस्क नवा को पछो

0: अरे तमिल जन ते नर्वस असतो काय की असो असो भीतर को असो
1: जो
2: पण कहूचो
1: राती 12 बजे वो अथच जेल साहब आज आसलनी
2: मो भी सही कथा भावुची
1: निश्चय जेल
2: पुलिस भी है पारे
1: मिस्टर सामंत बोधे सोई पड़लनी कबाट गे खोलिबो
2: आमे खोलिबा आमे संदीप आ प्रकाश
1: तू खोल मु एई आडुळ रे अपेक्षा करूची काले किछि
2: ठीक अछि अरे जिल साहब हां
1: आपण एते देर रे असुन जिल साहब एने आमो अवस्था जहा हेलानी
3: हां मु कोन करबी हाँ? रास्ता घाट रे पुलिस पैंतरा मारुछंती तुम फोन पाइबा परठु मु बहुत चेष्टा कलिने हां किंतु एठी के आसीबा संभव हे परनी तुमे गोटे ओडुआ जगह रे फसी जाई छ हां मेन रोड बदल रे तुमे सिने गोली रे पसी थान तो एठु तुमको खसीबा केडे मुश्किल काम जानु छ हां
2: ए घर रो दरजा खुला थिला आमे एठी पहुंचिबा पूर्वरो पुलिस के भी इन्फॉर्मेशन पाई जाई छी त आमे नाचा रे एठी पसि होलु
1: एबे एठु केमिति मुकुलिबा कहंतु आज राती भीतर एठु नगले आउ जीवा संभव नय
3: ओ 2 घंटा भीतर ही तुमे एठु मुकुलि जीव हां हेले ता गुरु मो मोहबक्स
2: किम बैग भीतर पैकेट आनी दे
1: संगे संगे दोची
3: अच्छा जो बेटा ये लोकटा केमती हां कौन ता ना सामंतो हां
2: जिल साहब अबे जदी ए पर जत बंचिचू खास तारी पई से आमो पे पुलिस को भी बिछो कहिची
3: हां का माने से तुमको सहाय्य करूची हां किंतु काई के लोकटा रो अन्य किछि मतलब नाही तो
2: हां ना जिल साहब ना से गोटा अलग प्रकार रो लोको
3: हां नाय नाय नाय एते शीघ्र लोकन को विश्वास करी जीवा आ तो ठीक नय हां
2: आठो बास तळे रणपुर चेक गेट पाखरे गोटा टूरिस्ट बस ऊपर जो चढो होइथला मने अछि
3: हां चेक गेट ऑपरेशन हां से ऑपरेशन मोडर रहैथला हां मो लोक माने करी थिले
2: आपण को लोक माने
3: हां तुम एमति चमकु जो काहे के कोन है छी
2: से ऑपरेशन रे तापू मर जाई छी
3: हां अच्छा अच्छा हां तथापि तुमे भाबु छ से तुमको सहाय्य करू छी हां
2: करू छी तो सब प्रकार रो सहाय्य करू छी
3: काहे काहे के
1: हां ए आपण को माल जेल साहब
3: वाह बा बा केते अछि हां
1: आधा किलो
3: आउ तेवे तो बहुत बहुत टंका आव 50 लाख
2: टंका में परने ले भी चलिबो हेले एठुआ में मुकुलिया केमती कोहतो हां ओ
3: हां हां बेस्त होबा दरकार नै पछपट दरजा खोला रख आउ आधा घंटा परे मो आसी तुमको नहीं जबे हां सामना पटे तुमे तो कस्मेन काले जाई परिवो ने हां
1: हेले पछो पड तो बीएसएफ कमांडो फोर्स
2: सर्च लाइट थरी जगी रही छती
3: राती गोटाए बेले ड्यूटी चेंज होवो हां से तो बेले जो माने चार्ज नेबे से माने मोलक क बुझिला हां मोलक अच्छा मो मो मो मो आसीले पछो द्वार खुला रखिबो हां पछो द्वार खुला रखिदिबो
2: हां अरे आपण हे जे सोईदासी मिस्टर सामंत
4: केमिति सोईबी मो घरे अतिथि माने आशंका उ दुश्चिंता रे विव्रत थिला बेले मते कोन निद होबो

0: फिक्स डिपॉजिट सबु थिरे यांको ही तो नॉमिनी रखी ची काली को जेबे मुँह न थी भी सेतबले यांको टंका मिली बा सहज है बो
1: सुबह सुबह कुहो कौन
2: आरबीआई कहे
1: सचेतन हुवंतु सतर्क रुहंतु
3: कस्टमर केयर तरफ रु फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेई जिवो ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु
4: ठीक लागुनी स्कैम भी हेई पारे।

0: जगन्नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ए जो सीतापति प्रभु राजीव लोचन परम कारुणिक राम भगवान
1: अच्छा
0: आज विश्ववासी मंगल विधान करंतु आनंद एक बार हरि बोल। आज आंब मान आलोच्य विषय वस्तु है मंदोदरी
1: अच्छा
0: अमीषा पक्षी गणा

कहले ये कौन इंद्रपुर सती ओ ऋषि अभिशाप आसी आम आश्रम जन्म नेला कि जाहे से कन्याटी नामकरण कले क्षुद्र कीट अंगु।

0: संगे संगे कहले ये क्षुद्र बेंग ठार जन्म या नाम आज ठार बेंगवती रूपे विदित हेउ हे गुणी ज्ञानी विवेकी महोदय विचार करिवे से जो बेंगवती कन्या को आगे आइए ऋषि दुजन अति जत्र सहकारे लालन पालन कले
1: क्रमे
0: बाल्य पौगंड को अतिक्रम कर जौवन राज्य पदार्पण करौवन केमी आसुची गोटाए पद श्लोक अलंकार शखर प्रमाण करते अठ वर्षा भवेत गौरी नव वर्षा चरोहिणी दस वर्षे भवेत कन्या हत ऊर्द रज आठ वर्षिया झीर अवस्था को गौरी बोली कहते नव वर्ष झीर अवस्था को रोहिणी बोली कहते दस वर्ष झील को कन्या बोला जाए तदुर्ध दस वर्ष ऊर्ध हेल्ले से झील टी रजस्वला जौवन आसला केते वर्ष आसला जना पड़ा ए गौरांगचंद्र बारिकी महोदय पदुटे प्रमाण दुनिया केमिका गोटे छांद आने क्रम।

ए सम्मानीय पंडित मंडळी सेदिन रावण से झीर हाथ को धरी आश्रम भिड़ी आणवा बेले बाळी उपस्थित होला कहला मो आगर मो भावी पत्नी नहीं जो छाड़ीदेवि संगे संगे बाळी कौन कला जाकर आज्ञा सी झीर डाण हाथ को धापी डाबुड़ी धरला कहला सुंदरी आते दिन आश्रम कष्ट भोग कर शीघ्र मो साथी आस पंडित मंडळी बाळी हाथ में एक कोटी सिंह बल सेपटू भिड़ुची रावण एपटू भिड़ुची बाळी।

कथा को विचार करो सम्मानीय पंडित मंडली आज्ञा ये बाली ताबाट चली गला रावण कांदिला कहला ऋषि पुंगव मत ये कन्या बंचे कहले मुझे छुई मेरी तम द्वारा हबन आय जन को डाक से मय दानवासी कर पहचिले मय दानव सी जो दुई फाल शब को एकत्रित कर धरी बसिले ऋषि मृत्यु संजीवनी मंत्र पढ़ी से जो कन्या जीवंत करदे कहले आउ गोटे कथा मो ना हूँ मंद एवं ये मो सान भाई ना हूँ उदर आम मंद उदर नाम को मिसाई कर नाम मंद उदरी हाउ।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

अनुराग कथाचित्रर एही गीतटी शुणिबा इच्छा प्रकाश करी एसएमएस करिछंती झांझरी मंगला कटकरु बामदेव पृष्टि गायछंती अनुराधा पडवाल एवं भूपिंदर।